0: बहुत आप इनकरेज करते हो, सो डेफिनेटली. और हेलो गाइज, राम राम. वी आर डूइंग अ कीर्तन नाइट 18th ऑफ जुलाई को. जय हो. जी हाँ, याद रखिए हमारे यहाँ पर क्राइस्ट चर्च का जो सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा ऑफ क्राइस्ट चर्च है, धीरेन जी, हमारे पंडित रूप जी, इनके साथ मिलकर ये दो आर्टिस्ट को लेकर आ रहे हैं सनातन सत्संग वॉइस क्राइस्ट चर्च 18th ऑफ जुलाई को टेम्पल्टन हॉल से. ये हमारे यहीं क्राइस्ट चर्च के निखिल और इनके साथ साथ ओकलैंड से आने वाली रानी जी, इनके साथ ज़रूर ये स्टेज पे होगा. एंड वी लाइक टू विश यू गाइस ऑल द बेस्ट. पीयूष जी का मैसेज पढ़ लीजिए, फिर हम जाकर हरजिंदर सिंह का प्यारा सा सॉन्ग प्ले करेंगे.
1: पीयूष जी कह रहे हैं, क्रिश जी आज आप वो सॉन्ग प्ले कीजिए जब आपने फर्स्ट टाइम जीबी जी को देखा था और आपके माइंड में आया था. आई डोंट थिंक आप वो सॉन्ग सुनना चाहेंगे वैसे.
0: बैंडर गई. चले, इस गीत में हम याद करना चाहेंगे हमारे पाजी हरजिंदर जी और इनके साथ हमारे परजाई जी, आप दोनों को हम याद करना चाहते हैं इनके साथ साथ बाकी भी जितने लोग हैं. यू आर लिस्टिंग टू रेडियो केजे लोकल ओनली ऑन
1: प्लेन्स मीडिया 96.9. पीयूष जी, हम आपको ये बात बताना चाहते हैं.

0: वेलकम बैक टू रेडियो केजे लोकल. आप सुन रहे हमें प्लेन्स मीडिया 96.9.
1: जी हाँ, काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं. आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं. बिल्कुल विकी, अगर जिन जिन लोगों ने मेरे कजन विकी को नहीं देखा होगा, गो फॉलो हिम ऑन टिकटॉक SID सिद, बाबू विद अग्री, राइट बाबू, बाबू सेंड मी अ इमोजी इस पे. अगर अग्री, इनसे ज्यादा हैंडसम बंदा आपने आज तक अपने जिंदगी में नहीं देखा होगा. इज सो गुड लुकिंग. इतने गुड लुकिंग थे ना कि जब ये हमारे लोटका सिटी में जाते थे ना, तो बस टैक्सी पूरा शहर रुक जाता था. चलिए जी, बहुत अच्छा लगा सभी का साथ, हंसी मजाक अपने जगह पर. आज इन्हीं वर्ड्स के साथ हम आप सभी को अलविदा कहना चाहेंगे. मिलेंगे आपसे आने वाले फ्राइडे को. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, रेडियो केजे को जो सपोर्ट आप देते रहिए. कल शाम को हम, यानी कल सुबह हम मंडे वीडियो के साथ वापस हमारे पेज पे. शालिनी जी आप भी हमारे साथ आ गई है, लता कुमार जी आपको भी जय श्री राम. सभी के साथ इन विथ योर वेरी वेरी गॉर्जियस आरजे जीबी के साथ, दिस इज आरजे क्रिश साइनिंग ऑफ. एंड ऑफकोर्स आरजे जीबी आपकी तरफ से
0: बस बाय कहना चाहते हैं और फ्राइडे को मिलते हैं. हम थोड़े से खो गए थे. शालिनी गुप्ता जी का हरियाली तीज हो रहा है 22nd